अरे तरके बोले कैसे कि तोगे डॉटर बताज एक्सप्रेस है आगे दस गोलाल मात के जगूर अरे धरो फाया ये से जिगा के जिगा लंबा फेसबुक एंड ताज एफएम डॉट सी ओ डॉट के ई ताज एफएम डॉट सी ओ डॉट के ई ये से नंबर गोरे नोटर बसी मिड नोटर बसी 0114558728 तो लंबा व्हाट्सएप करा आमी तेरे नंबर नोटर बसी 0745824965 0745824965 ये जो लंबा व्हाट्सएप है ईचे करें कि चुकी नोटर मुड़ोगा मुड़ोगा और लंगू वाला ठीक है ऐसे के जितने कि जगनाथ तेरे बताने एक्सप्रेस है आज को भी जितना आपको तो लंबा साइट है मन का गेंगे ये से कुछ के बागों नोटर बंग निसीरी सीरी नोटर तो मगाई इमोशनी ची